0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಡೋದರಾ.
1: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into India's solar revolution.
2: India's solar revolution has transformed from a state-level initiative in Gujarat into a massive national movement driving economic growth, energy self-reliance and clean power. From an installed solar capacity of just 2.8 gigawatt in 2014, the nation has achieved nearly 165 gigawatt by mid-2026. Taking solar power directly to households, Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana has empowered over 51 lakh families and commissioned 14.8 gigawatt of rooftop solar installations across the country. Highlighting this transformative impact of this scheme on ground level entrepreneurship, Prime Minister Narendra Modi shared an inspiring journey of a beneficiary from Gujarat.
3: आज पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है. इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और चार महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया. अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई है. पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है. वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है.
2: दिनेश भाई मकवाना, अ रेसिडेंट ऑफ सुरेंद्रनगर, शेयर्स हाउ द इनिशिएटिव हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड हिज फैमिली.
4: मेरा नाम दिनेश भाई मकवाना है. मैं सालों से गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में रहता हूँ. मैंने पास पीजीवीसीएल का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया. इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली और अब मेरे घर का बिल जीरो हो गया है.
2: टुडे गुजरात स्टैंड्स एज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन सोलर इंस्टॉलेशंस अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. अपर्णा खुंड, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद.
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज.
5: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
1: The Ministry of Ayush will host the 11th Ayurveda Day in Nagpur, Maharashtra today under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. The ministry said Ayurveda institutions, practitioners and stakeholders will participate in the celebrations across India and worldwide. The ministry said the celebrations will bring together key stakeholders from across the Ayurveda ecosystem, providing a platform for knowledge exchange and wider engagement. More from our correspondent.
6: The inaugural ceremony of 11th Ayurveda Day, based on the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow, will be held at the Kavivarya Suresh Bhat Auditorium in Nagpur from 9 to 10 a.m. this morning. Vice Chancellor of the National Institute of Ayurveda Jaipur, Dr. Sanjeev Sharma, informing about this event, said that this year's Ayurveda Day will focus on strengthening Ayurveda through evidence, research and innovation while promoting community health and well-being. Director of the Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi, Dr. Shiv Kumar Sarin, will address a scientific session on integrating therapies is needed to reduce non-communicable diseases burden by 2027. The program will also witness the launch of From Traditional Wisdom to Global Leadership Ayush Vision 2030 report, the status report on Ayush-related inventions in India, and the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences Ayurveda Gyan Naipunya Initiative, CCRAS Agni, and assessment scale web portal. Dhananjay Vankhede, Akashwani News, Nagpur.
1: The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. The weather agency has predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Sikkim, Bihar, Jharkhand, Kerala, Mahi, Konkan, Goa, Maharashtra and West Bengal. A deep depression over the west